0: देह मोह कोटिक बिशन महेश
1: कोटिंदर गुरमग तेरा सतोर जलेश
0: दोहरा राम कथा जग जग अटल सब कोई पाखत नेत
1: स्वर्ग पास रग भर करा सगरी पुरी समेत
0: चौपाई जो है कथा सुना अरगावे
1: दूध पाव ते निकट नावे
0: बिशन पत की ए फल होई
1: आद ब्याह छह सकेन कोई
0: सम्मत सत्रह सहस पचावन
1: आड़ विधि प्रथम सुख दावन
0: प्रसाद कर ग्रंथ सुधार।

दियो से स्नान कबहु सिद्ध साधक मुह ज्ञान कबहु कीटहस्त पतंग हुई ज्ञान जन परम परमिया नन दूज स्वाग दिखाए जन प्रभु पावत वन चाह जद पावा सोई हुए नन गु जाव न कोई कबहु सा संगति हु पावा सा स्थान दे बहर न आवे अंतर हुई ज्ञान प्रकाश सो सा स्थान कनह विनाश मंतान नाम रति करंग सदा बस हु पार ब्रह्म का संग जो चार मह चलाए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मेट गए गवन पायुल सराम नानक प्रभु का साध प्रवान सलोक सुखी बसा मस्किन यावन वार तली बड़ी बड़े अहंकारिया नानक गर्व करे अष्टपदी

करे सो प्रभु करंग सदा सदा बस हर संग सहज सुभाय हुआ सो ही करण हर पुछाण सो प्रभु का किया जन वीठ लगा न जैसा सत है दृष्टा न जिस तिव जित हिमह समाई ओय सुख निदान उन हुमन आया उस पाप दीन मैं नानक प्रभु जन एक जन श्लोक सर्व करा पार पूर प्रभु बिरथा जानन हार जाके सिमरन उदरी नानक देह बल हर अष्टपदी

गिरजावस्पदि जब अकारि हुकाशना दृष्टिता पापुन तब कहति उत जब तारी अपन सोन समाधि तब वैर विरोध के संकुमार जब इसका

पीस जह ज्योत स्वरूप जो संग समाव तह के सब ऊख कौन त्रवताव कर्म क्रावन करण आनन करत कन समार जब अपने स्वभाव संग बनायु ताब कौन वाय बाम तर सत पाई जह सर्व कला आप प्रवीण तह वेद देव कह कौचीन जब अपना आप और तार तब सगन अब सगन कह विचार है।

की फतेह। सावन सरसी का मणि, चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रता सच रंग, इको नाम आधार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

ते स्वेत जी जुग के रंग तनक नाम अनेक अनंत कर्मी कर्मी हुए विचार सचा सुचा दरबार ते सोन पन प्रमाण नदरी कर्म पवे अनुसारण कत पकाई उथ पाए नानंग्या जापे जाय धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का कुकर्म किते पवन पणि वा संतर किते काम हेस किते ब्रह्म घाट करिए रूरंग वेस केतिया करम भूमि मेर केते केते तू देस केते इंद्र चंद सूर केते केते मंडल देश